ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून 2026। सुबह के 5:53 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आपसे कुछ ही पलों में 6 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।

6:05 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का, लेकर हाजिर रहेंगे गौतम कौर। 7:00 हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 7:05 पर मुनीष चौधरी लेकर आपके साथ रहेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 8:00 का समय आपके साथ होंगे गौतम कौर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का। 9:00 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने मुनीष चौधरी के साथ। 10:00

सुबह 10:05 पर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक के साथ आपके साथ रहेंगी ज्योति। 11 बजे का समय हिंदी समाचार का, 11:05 पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ रहेंगी प्रियंका। 12 बजे का समय रहेगा हिंदी समाचार का, 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक ज्योति के साथ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: Both sides underscored the importance.
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
6: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
7: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
5: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
8: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस

0: बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु

0: पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the

Well, listeners, can I call you up on the key? आतिफ असलम लगा वास्ते से फिल्म से अजब प्रेम की गजब कहानी गीत लिखी है उसे इरशद कमील और म्यूजिक दिया है उसे प्रीतम और एक गीत करने लिखी गिना पता से डैनियल मोमिन कोहिमा पर टाइप लिखी गिना पता से सो थैंक यू सो मच डैनियल आपने लिखी गिना पता दिया करने अपनी मंगी से अंजना अंजनी को ऐसे तो फिल्म लगा गाना तो तू जाने ना इतु तो आतिफ असलम लगा से अजब प्रेम की गजब कहानी सो हूँ इन्हें एंजॉय करवे

ग्राम जसवाडी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश पर को लिखी पता से सुर रेडियो लिसनर्स ग्रुप तेखान गाना मांगिया से सरगम फिल्म पर सो लिसनर्स का नीटे हुनी वो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफील का वास्ते।

वाल प्रोग्राम टेक को हनी वर्बल के लता मंगेशकर लगा वास्ते फिल्म से शगिर्द और तो गीत करने लिखी की न पता से जोगिंद्र रोंगपी धर्मकिरी रोंगपी और सोनाली इंगटीपी सारे ही जानकर बियन लोंग असंपरा और तो गाना डेडिकेट कर दिया से रखेबू अमल बसमतरी ब्रेन हांसे वैकुन मुंडा चंद्र तिमोंग चुबा के जमेर देवाशीष हजारिका डैनियल मोमिन फगु उरांग हाना हंड्रिका तिमोंगपी इताकतो अचुमी इनुका अचुमी किलितोली यप्थोमी कुपुवी आयमी रमेश पात्रो रुनु पात्रो रोकोविले मेहता शिकारी रोंगफार सुनील फांगचो सभी आरजे और सुन रहे श्रोताओं को इन्हें लिखा है से वेल थैंक यू सो मच लिखी के ना पठाई दिया करने बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को फॉर राइटिंग तो इतिहास हुनी लोग वही तो गाना

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है। जी हाँ जनाब, हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, अट्रैक्टिव दिखना चाहता है। वहीं जब हम किसी से पूछते हैं कि खूबसूरत कौन है, तो इसका जवाब हर इंसान के साथ बदलता जाता है। कहावत भी है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। हर इंसान और हर दौर के साथ खूबसूरती के पैमाने बदलते जाते हैं। वहीं देखा जाए तो पतली काया, चेहरा, बदन और दुबले पतले बने रहने का दौर हमेशा लोगों की चाहत रहता है और हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है कि वो पतला दिखे, चेहरा दिखे। दुबले पतले होने के साथ साथ वो अट्रैक्टिव लगता है, उसका ऐसा मानना है। लेकिन वहीं देखा जाए तो आजकल के सिनेरियो में, आजकल के वक्त में हर इंसान, अधिकतर इंसान मोटापे से परेशान है, ओबेसिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं और इस मोटापे और ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन ये मोटापा है कि जिंदगी से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, कहाँ पर हम मोटापे को, ओबेसिटी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कैसे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है जिससे कि हम मोटापे से दूर होते हुए स्वास्थ्य को पा सके, हेल्दी रह सके। और आज इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए रेनबो हेल्पलाइन में हम टॉपिक लेकर आए हैं ओबेसिटी, मोटापा, द वेलनेस वेव ओबेसिटी। और हमारे साथ है हमारे आज के एक्सपर्ट रेखा पाल शाह, डाइटिशियन है आप और एम्स से संबंधित हैं, दिल्ली एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार। मोटापा, आप बहुत बिल्कुल सही पोस्चर में हैं, बिल्कुल चेहरा बदन है आपका, पतले हैं जितना आपको होना चाहिए। लेकिन अधिकतर आप जब देखते हैं, एम्स में भी आते होंगे कई सारे केसेस या आप बाहर भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि आजकल मोटापे से बहुत सारे लोग परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक को ही समझना चाहेंगे कि ये मोटापा है क्या और आसान शब्दों में मोटापे को कैसे समझा जा सकता है।
2: देखिए, अगर हम आसान शब्दों में एक मोटापे को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें हर इंसान की एक लंबाई के अकॉर्डिंगली उसका जो वज़न होना चाहिए और हर इंसान की अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम उस बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक्युमुलेट इकट्ठा होने लगता है और वो धीमे धीमे करके कुछ समय के बाद एक मोटापे के रूप में आपको दिखने लगता है। आपके कपड़े थोड़े से टाइट होने लगेंगे, फिर आपको फील होगा नहीं मेरी जीन्स टाइट हो रही है, मेरे कपड़े हो रहे हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि अब आपको मोटापा हो गया है।
1: जी बिल्कुल। हाँ। जब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तब हमारी नजर उस पर पड़ती है।
2: एग्जैक्टली।
1: लेकिन इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी,
2: इसकी शुरुआत पहले से हो चुकी होती है। हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे पढ़ने में बिजी हैं, हम थोड़ा सा, हमारी थोड़ी सी इग्नोरेंस रहती है, हम ध्यान ही नहीं रख पाते हैं कि हमें कोई अलर्ट करने वाला नहीं होता है कि हाँ हमें मोटापा आ रहा है। वो हमारा, जब हमारे फ्रेंड सर्किल में या आपके आसपास वाले लोग टोकते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ अब आपको अलार्म सिचुएशन आ गई है, अब आपको अपने बॉडी पे ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी हाँ, आपकी लाइफ पे भी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन ना आए इसके लिए जरूरी है कि आप मोटापे को समझे, ओबेसिटी से दूर रहे। लेकिन कैसे दूर रहे, यही सब जानने के लिए आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, क्योंकि आज का विषय है मोटापा, ओबेसिटी। आपके पास भी कोई सवाल है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप करें 9868107070, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप अपने क्वेश्चन लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं 9868107070।

0: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम और आज हम विषय लेकर आए हैं ओबेसिटी। जी हाँ, मोटापे से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। एक बार मोटापा जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो उसे जिंदगी से बाहर निकालने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि कई बार तो हम हताश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये मोटापा जो एक बार आ चुका है उसको हम जिंदगी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हम कई सारी चीज़ों में, अपनी आदतों में, अपने खान पान में और अपनी दिनचर्या में बदलाव करके ओबेसिटी से, मोटापे से निजात पा सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन रेखा पाल शाह और आज वो बहुत सारी खास बातें आपके साथ करने वाली हैं जिससे कि हम इस मोटापे को अपनी जिंदगी से दूर भगा सकें। जी रेखा जी, एक पहला मैसेज जो आया है वो अंबाला से राधिका का आया है। राधिका कहती है कि उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद बहुत वेट गेन कर लिया है और अब उनका बेटा 3.5 साल का है, लेकिन ये जो वेट गेन किया है वो वापस जा ही नहीं रहा है। उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया है लेकिन फिर भी मोटापा वहीं का वहीं है।
1: देखिए, आपने प्रेगनेंसी के टाइम में वेट गेन किया है, ठीक है, उस टाइम हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा वेट गेन हो रहा है। वो लाइफ का एक ऐसा मोमेंट होता है, सिर्फ हमें उसी मोमेंट में खुशी होती है जब वेट बढ़ रहा होता है। बाकी टाइम में अगर हमारा वेट बढ़ रहा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए प्रेगनेंसी होने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि हम बिजी हो जाते हैं बच्चे के साथ, ये बहुत सारे आपके मेंटली और दूसरे तरह के बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, ठीक है, आप तो पहले तो अगर अब बच्चा आपका 3.5 साल का हो गया है, अगर बच्चा जैसे छोटा था उसी टाइम से आपको ये कोशिश में लग जाना चाहिए था। जैसे आपको बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाना चाहिए था, वो एक वेट रिडक्शन में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, आपको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके, आप किस तरह की एक्सरसाइज और खान पान में क्या क्या ध्यान रखना है ताकि बच्चे को अगर ब्रेस्ट फूड की तरह जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो प्रॉपर मिलता रहे। तो बेसिकली अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करोगे अपनी डाइट में, अब 3.5 साल का बच्चा हो गया तो आई होप आपने अभी ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर दिया होगा, तो आप प्रॉपर अगर डाइट फॉलो करेंगे, अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाएंगे, फैट कम लेंगे, ठीक है, आप डबल टोन दूध जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली आपको फैट कंटेंट कम करना है, एक्सरसाइज करनी है और फाइबर इंटेक बढ़ाना है, इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और डिपेंड करता है आपकी कोई हेल्थ कंडीशन ना हो, कोई आपको कोमॉर्बिड प्रॉब्लम डिजीज ना हो, ये भी डेफिनेटली डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी में काफी लोगों को गेस्टेशनल डायबिटीज या दूसरी तरह के जाते हैं। हाँ, तो ये आपको प्रॉपर आपकी रिपोर्ट्स देख के एक आपको सुपरविजन में एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाना पड़ेगा अपने किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके, उसके बाद ही आपका सही डायरेक्शन में। और जो आपने बात की है जिम जा रहे हो फिर भी कम नहीं हो रहा है, देखिए जिम जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन कि हम जिम चले गए और हमारा वेट सडनली डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है अगर आप जिम जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में फिर भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। सिर्फ जिम जाना से नहीं आपका वेट कम होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज के तौर पे आप जिम जा रहे हो, अपने खाने में मॉडिफाई करिए, फैट कम लीजिए, जो भी प्रोटीन ले रहे हैं आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए, फाइबर इनटेक बढ़ाइए अपनी डाइट में, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें लेके आपकी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर, हाँ, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट जो भी अगर आप उनसे कंसल्ट लेके करके डाइट चार्ट बनवा सकते हो तो बिल्कुल वेट रिड्यूस होगा।
0: बिल्कुल, मनीष का मैसेज आया है, वो कहते हैं कि क्या चावल और रोटी को कम कर दे खाने से तो मोटापे से बचा जा सकता है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है। चावल है रोटी, ये ऐसा लोग सोचते कि चावल और रोटी कम करने से वजन कम होता है, किसी हद तक। देखिए, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे हम रोटी लेते हैं जनरली, आजकल हम गेहूं की रोटी यूज करते हैं सारे लोग, हमें उसको मॉडिफाई करना है। हम उसमें बाजरा, जौ, रागी, ऐसे कुछ कुछ आटे, मल्टीग्रेन आटा जो हम कहते हैं, अब वो देखिए मार्केट से जो मल्टीग्रेन आटा आता है, पता नहीं उसमें क्या क्या मिक्सचर है, बट आप नॉर्मल अगर गेहूं का आटा यूज करते हैं उसको मॉडिफाई करना है। अगर आप 3 भाग गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं तो 1 भाग बाजरा ले आए आप 1 महीने, फिर नेक्स्ट मंथ जौ ले आए, फिर रागी ले, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ आपको क्या बेसिकली रिफाइंड फ्लोर अपनी डाइट से हटाना है, रिफाइंड जिसमें फाइबर चोकर जो बोलते हैं वो नहीं है उसको ऐड करना है, ठीक है। प्लस आप चावल की बात करते हैं, व्हाइट राइस ठीक है, अगर अब कोई होता है कि नहीं मुझे व्हाइट राइस ही चाहिए, सफ़ेद चावल ही चाहिए, उसकी जगह से हम ब्राउन राइस या फिर ब्लैक आजकल चावल आ गया वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें फाइबर होता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी होती है और किसी को चावल ही लेना है सफेद राइस तो हम उसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई इन द सेंस उसको हम उसमें वेजिटेबल्स का ऐड करनी है ताकि राइस की क्वांटिटी कम हो जाएगी, वेजिटेबल्स के थ्रू फाइबर आपकी बॉडी में चला जाएगा और उसको जो क्रेविंग हो रही है या सेटिस्फेक्शन है वो भी मिल जाएगा। तो हमें बेसिकली अगर मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो ये बॉडी को प्यार से हमें वेट रिड्यूस करना है, ऐसा दुश्मन कितनी तरह बिहेव करना है कि लाइक आपने अपनी डाइट में जो सारी चीजें हटाते गए तो आपको हर चीज की क्रेविंग ज्यादा होगी,
0: ज्यादा होती है। बिल्कुल, जो चीज हम नहीं खा रहे होते हैं उसी को लगता है कि ये खाने का मन कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। राजेश कुमार चौहान जलंधर से लिखते हैं कि देरी से भोजन करने से क्या मोटापा बढ़ सकता है और क्या मोटापा डायबिटीज का भी कारण बन सकता है, और दूध की भी उन्होंने बात की है कि रात को दूध पीने से मोटापा बढ़ सकता है क्या?
1: नहीं, पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन लेती हूँ कि इन्होंने बोला दूध पीने से मोटापा बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूध पीने से मोटापा नहीं मिलता है, ये आपको चूज करना है आप किस तरह का दूध ले रहे हैं, ठीक है। आप फुल क्रीम दूध होता है, टोंड होता है, डबल टोंड होता है, वो डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में आ रहे हैं, आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वजन किस किस कैटेगरी में है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल है सब कुछ है तो दूध पीने से वजन बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दूध हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उसमें कैल्शियम होता है जो हमारी बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूध आप लीजिए, बट आपका जो दूध का चयन होना चाहिए वो डबल टोन दूध या फैट फ्री दूध कहते हैं, जिसमें फैट नहीं होना चाहिए। बाकी प्रोटीन हमें दूध से मिलेगा, कैल्शियम दूध से मिलेगा और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हमें दूध से मिलते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आपका तो ये पहला ये हो गया दूध वाला। दूसरा आपने क्या पूछा था?
0: जी, उन्होंने कहा था कि मोटापा डायबिटीज का कारण बन सकता है क्या?
1: बिल्कुल, मोटापा डायबिटीज का ही कारण है। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपने बहुत सुना होगा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सारी चीजें हमारे मोटापे की वजह से हो रही है। बिकॉज हम अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन हमें करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन करने हैं, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वो हम नहीं कर पाते जिसकी वजह से मोटापा आता है, और मोटापा की वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आजकल बहुत कॉमन हो रही है। तो हमें डेफिनेटली अपने मोटापे को, अपने वजन को कंट्रोल करने की जरूरत है।
0: जी बिल्कुल। तीसरा उन्होंने कहा था कि अगर देर से भोजन करते हैं रात को तो क्या इससे भी मोटापा बढ़ता है और क्यों बढ़ता है?
1: बिल्कुल, देखिए मैं इसमें अब पुराने जमाने की जो बात कही गई हुई है मैं थोड़ा सा उसको लाना चाहूंगी।
0: बिल्कुल।
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। आजकल आप देख रहे होंगे ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है हमारे देश में, और आप देखिए हर कोई, हर दूसरा बंदा ओबेसिटी से परेशान है, ठीक है। आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत देखी जा रही है। बिकॉज पहले के टाइम हम जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे। आजकल क्या है, हर कोई बिजी है लाइफ में। आजकल क्या नाम है, हम महिलाएं भी कामकाजी हो गई हैं, तो थोड़ा सा हमें भी अपने काम को निपटाने में और इसमें लगता है। तो बेसिकली मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, और ये फैक्ट है कि रात में आप देर से खाते हो, ठीक है, उससे मोटापा बढ़ता है। तो आपको ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर की मैं बात करती हूँ, तो देखिए ब्रेकफास्ट आपको थोड़ा सा हैवी चाहिए, ठीक है, हैवी, जस्ट लाइक अ किंग, राजा महाराजा की तरह खाना,
0: ओके,
1: बिल्कुल हैवी। आपको अपने दिन की स्टार्ट जो शुरुआत करनी है बहुत अच्छी करनी है। जो लंच होना चाहिए दैट शुड बी अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, और डिनर होना चाहिए जो एकदम गरीब इंसान की तरह, जिसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता उसकी तरह हल्का फुल्का होना चाहिए उस। लेकिन आप देखो आजकल हमारा जस्ट अपोजिट जा रहा है, ठीक है। ब्रेकफास्ट हम भागते हैं ऑफिस के लिए, टाइम नहीं है। लंच भी ऑफिस में कुछ मिला मिला, नहीं तो कोई किसी का कुछ पार्टी है या कुछ भी, या स्नैक्स ले लिया, कुछ नहीं ला पाए
0: तो
1: वो
0: ले
1: लिया। फिर डार में रात में हम वी आर जस्ट लाइक अ किंग, हम एकदम राजा की तरह खाते हैं, उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सब कुछ होता है। दैट इज द रीजन कि ओबेसिटी बहुत कम हो। आई नो इट्स डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ हम अगर प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं।
0: मैनेज किया जा सकता है, हर चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, और अपने आप को टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि बस हमारे, पहले तो हमें पता नहीं चलता कि मोटापा कैसे धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। जब हम मोटे हो जाते हैं तो उसके बाद चाहते हैं कि बहुत जल्दी से हम इस वेट को रिड्यूस कर दें, जिंदगी से भगा दें।
1: और इवन हम ये कोशिश करते हैं कि बस हम आज जिम गए या आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की
0: शुरू,
1: और फिर हमारे 10 दिन में वी शुड, हमें एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपका वेट गेन होने में भी टाइम लगा है और वेट रिडक्शन में भी टाइम लगेगा।
0: जी बिल्कुल। पैंथर तोमर दिल्ली से लिखते हैं कि क्या मोटापा हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी हो सकता है और कई लोग मोटापे की सर्जरी करा रहे हैं, ये कितनी सही है और कितनी गलत है?
1: देखिए, मोटापा बिल्कुल हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है. जैसे मोस्टली हमने फीमेल्स में देखा है पीसीओडी होती है, उनके पीरियड्स एब नॉर्मल होते हैं, उसकी वजह से भी थायराइड प्रॉब्लम्स हैं कितने लोगों को. ये बिल्कुल फैक्ट है कि उसकी वजह से हो सकता है, बट उसको हम प्रॉपर मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से प्लस डाइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं. और जो आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, आजकल मोटापों के लिए कर रहे हैं, हाँ सर्जरी हो रही है, बट उस सर्जरी के भी बाद में भी आपको अपनी डाइट में कंट्रोल करने की ज़रूरत है. और सर्जरी के सक्सेसफुल रेट हैं, बट वो प्रॉपर आपकी एडवाइस न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, आपकी डॉक्टर्स होंगे, प्रॉपर आपको एक निगरानी में ही सर्जरी होगी
0: जी.
1: तो ये पूरी टीम है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी का बीएमआई कितना है. हर कोई सर्जरी नहीं करा सकता, बीएमआई के ऊपर डिपेंड करता है कि 35 के अबव होगी बीएमआई तभी होगी सर्जरी. जैसा टीम बेसिकली पहले तो हम डाइट से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वी आर अ टीम, हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ किसकी सर्जरी पॉसिबल है किसकी नहीं है.
0: जी बिल्कुल. एक और मैसेज आया है ऋतु का, दो मैसेज मैं एक साथ लेना चाहूंगी. दोनों ही गर्ल्स हैं और प्रेगनेंसी के बाद के जो वेट गेन किया जाता है और उससे पहले प्री एंड पोस्ट, उसके बारे में जानना चाहती हैं. एक तो आया है फरहाना का मैसेज आया, वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी में कैसी डाइट लेनी चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. उन्होंने अपनी डिलीवरी की हुई अभी उनकी, और वो कहती हैं कि उनका वज़न तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और उनका जो बेबी हुआ उसका वज़न बहुत कम था. तो डॉक्टर ने एक बात उनसे कही कि आपने वो वाला खाना खाया जिससे आपका वजन बढ़ा, लेकिन वो खाना बच्चे को नहीं लगा. तो वो कहती है वो बात इन्हें समझ नहीं आई. एक तो ये बात समझना चाहती है, ये बात समझने के बाद मैं दूसरा मैसेज फिर नेहा का है उस तरफ आगे बढ़ती.
1: देखिए, डॉक्टर ने उनको बोला आपने वो खाना लिया जो आपको लगा बच्चे को नहीं लगा. ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे बेसिकली देखिए, जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं एक्स वाई जेड कोई भी लेडी, हमें ना सबसे पहले देखिए हमारा ऑलरेडी अपना बॉडी का एक वेट होता है और हमारे अंदर जो एक बेबी ग्रो कर रहा होता है उसको बेसिकली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो डाइनोटिसनेस को पता है. अब जब भी प्रेग्नेंट होते हैं, थ्री ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट थ्री मंथ्स, नेक्स्ट थ्री मंथ्स और नौ महीने के, तो आपको हर ट्राइमेस्टर पे जाके जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम अगर आपको कंसल्ट किया, आपने मुझे नहीं पता आपने किसी से कंसल्ट किया था कि नहीं किया था, अगर आपने उस टाइम किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपने उसको, आपको उस टाइम हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए थी, लो फैट डाइट लेनी चाहिए थी, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए थी, कैलोरीज होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फैट लेना चाहिए था. वो प्रॉपर आपके हाइट वेट के अकॉर्डिंगली प्लान करके देते कि जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है उसके अलावा जो बेबी के लिए, जो बेसिकली मेन न्यूट्रिएंट्स जो बेबी के लिए रिक्वायरमेंट है.
0: जी बिल्कुल.
1: तो मे बी आपने उस टाइम कुछ गलतियां की हुई हो.
0: हाँ, उनका मैसेज आया है, उन्होंने कहा उन्होंने घी मक्खन ये सब चीजें बहुत ज्यादा खाई.
1: एक्चुअली ये थोड़ा सा मिथ भी है कि लास्ट के जो डिलीवरी के लास्ट के दो मंथ से या दस एक महीने तक दूध में, वो भी आप जो दूध यूज कर रहे हो फुल क्रीम दूध यूज करते हो और उसमें घी डाल के खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये ऐसा मिथ है, बट ऐसा होता नहीं है. वो जो फैट है जो आप इस टाइम ले रहे हो वो पूरा फैट आपकी बॉडी में ही लगता है, बेबी में नहीं जाता है. और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी, उससे कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ एक मिथ है. और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, एक ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है.
0: 9 किलो कैलोरीज,
1: आप ये सोचिए कि कितना एक्स्ट्रा है. तो आपने जो भी लिया वो आपकी बॉडी को मिला, यही एक रीजन है कि आपका मतलब आपने उसके बाद वर्कआउट नहीं कर पाया क्योंकि आप उस टाइम उस स्टेज में नहीं होते. ये आपको सिर्फ अपने बेबी दिखता है, आपको सिर्फ बच्चा ही दिखता है.
0: हाँ जी,
1: उस टाइम हम फीमेल्स अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचती हैं. और जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ओबेसिटी के बारे में बताया, तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है. तो डेफिनेटली अभी भी आपको हारने की जरूरत नहीं है, आप ये मत सोचिए कि वेट कभी कम नहीं होगा. आप प्रॉपर मॉर्निंग ब्रिस्क वॉक स्टार्ट करिए, एक अच्छा सा डाइट प्लान बनवाइए. ठीक है, अभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर, डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है और वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैलोरीज डिसाइड करेंगे आपको कितनी कैलोरीज देनी है. जनरल टिप्स वो मैं आपको दे सकती हूँ, बट वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेंगे.
0: नेहा का भी एक ऐसा ही मैसेज आया है, नेहा सिंह हैं ये, और ये लिखती हैं कि हाउ टू रिड्यूस वेट आफ्टर डिलीवरी और पोस्ट प्रेगनेंसी, किस तरीके से वेट को रिड्यूस किया जाए.
1: मैं सिर्फ
0: इसमें ये डाइट चार्ट के बारे में भी कह रही हैं कि डाइट चार्ट कुछ आप हमें बता दीजिए जिसको हम फॉलो करें।
1: आप बेसिकली देखिए, हमारे किचन में ही सब कुछ है, ठीक है। हमें कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करनी है अपने, हमें पहले किचन में से रिफाइंड फ्लोर जो हम कहते हैं उसे हटाना है। रिफाइंड फ्लोर की बात करते हैं तो मैदा या मैदा से बनी हुई चीजें हटा देनी है, ठीक है। और दूसरी चीजें जहाँ हम आटा यूज करते हैं, मैंने अभी बताया, उसमें मिलेट्स ऐड करने हैं, बाजरा, जौ, रागी, इस तरह सी चीजें ऐड कर सकते हैं। आपका ऑयल का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ऑयल जो तेल का कॉम्बिनेशन कहते हैं। जनरली हम ऑयल जो यूज करते हैं, सरसों का तेल, राइस ब्रान, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन यूज करना है।
0: एक आप यहाँ पे ऑयल का कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, इसका मतलब क्या रहता है?
1: ऑयल का कॉम्बिनेशन होता है कि देखिए, हमारी बॉडी को फैट की जरूरत होती है, ठीक है, बट जो भी हम फैट ले रहे हैं उसमें हमें अच्छी क्वालिटी का फैट लेना है, इट मीन असेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए 3:1 में होना चाहिए। तो जनरली मैंने अपने पेशेंट्स के में भी देखा है कि हम जो काउंसलिंग करते हैं, मोस्टली लोग होते हैं सरसों का तेल यूज करते हैं, देसी घी यूज कर रहे हैं। हाँ, तो जनरली अगर आप ऑयल का चयन करते हैं तो आपको अपने घर में, आप जैसे आपने दो तरह के ऑयल यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आपने सरसों का तेल यूज किया है तो रात में आप राइस ब्रान यूज कर सकते हैं, और इसको हर महीने चेंज करते रहिए। जैसे फिर सोयाबीन कर लीजिए और फिर ऑलिव ऑयल है, हर महीने चेंज करते रहिए, उसी तरह से एसेंशियल फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। थर्ड थिंग इज दैट आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी मतलब घर में जो दूध आ रहा है, ठीक है, मिल्क आ रहा है, कोशिश करिए वो फैट फ्री दूध यूज करिए, फैट फ्री, जिसमें फैट कम हो, बिकॉज आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट इतना एक्यूमुलेट हो चुका है कि आपको एक्स्ट्रा फैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको जो चाहिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट बॉडी के, जो अदर न्यूट्रिएंट्स की चाहिए, वो मिल जाएगी अगर आप बैलेंस डाइट लोगे, हेल्दी बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट लेना है विद हाई फाइबर।
0: जी बिल्कुल, एक इम्तियाज का मैसेज मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद हम म्यूजिकल ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद इम्तियाज दिल्ली से लिखते हैं कि उनकी उम्र 40 है लेकिन वेट जो है वो 90 के आसपास है, और जो उनकी हाइट है वो 5'7" है। उनका दर्जी का काम है, वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं और अधिकतर समय उन्हें बैठ के ही काम करना पड़ता है, तो ऐसे में वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते और बैठे रहने से उनका मोटापा बढ़ रहा है। तो वो जानना चाहते हैं कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है, उनकी सिटिंग जॉब है, वो नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लाइक स्टार्टिंग में दिन में जब आप करते हैं, तो आप सुबह 6-7 बजे से तो दर्ज आप सिलाई नहीं करने लगते होंगे, तो आप उस टाइम थोड़ा सा कोशिश करिए अपने लिए टाइम निकालिए, बिकॉज आपकी अगर बॉडी नहीं साथ देगी तो आप अपना जो आपका काम है उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप आधे आधे घंटे वॉक करिए, या उसका आपका टारगेट होना चाहिए 45 मिनट, धीमे धीमे स्टार्ट करिए। प्लस बैठे बैठे आप ना, आपका आप ये सोचिए आपका मुंह चलते रहना चाहिए। लाइक अभी आपने सलाद ले लिया एक प्लेट, ठीक है, उसके बाद आप छाछ पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लापसी करके एक होता है ड्रिंक, राजस्थान में काफी फेमस है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। उसमें जौ का भी बनता है, उसमें दलिया का भी बनता है, वो आप पियेंगे। एक्चुअली इन सारी चीजों में बीच बीच में आप भुने चने ले सकते हैं,
0: हाँ, उसमें बिल्कुल फैट नहीं होता, ये सारी
1: उसमें भुने चने छिलके वाले लेने हैं, उसमें फाइबर होगा। तो क्या होगा, आपकी बॉडी ना, आप जब ये हेल्दी आइटम खाओगे तो आपकी बॉडी ना आपके बैठे बैठे भी वर्कआउट अंदर चलता रहेगा, उसको डाइजेस्ट करने में ना बॉडी को काम करना पड़ेगा, आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगे। जनरली मैंने देखा है, मतलब मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, कि लोग चाय ले लेते हैं, उसमें बिस्किट डिप कर लिया, भुजिया ले लिया छोटे वाले पैकेट, प्लीज ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है। इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, वो आपके वजन बढ़ाने में मदद करेंगी, तो ये सारी चीजें नहीं लेनी है। जो मैंने आपको बताया, आप वॉक करिए, रिफाइंड फ्लोर, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, और बहुत खाने का दिल है तो आप मुरमुरा भी बना के, जैसे घर में हेल्दी मुरमुरा बना के रख सकते हैं, उसमें मूंगफली, भुना चना, हेल्दी सीड्स भी आप कैरी कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा मार्केट में हेल्दी सीड्स के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उसको कैरी करिए, उसको खाइए, इस तरह से आप वजन कम कर सकते हैं।
0: जी हाँ जनाब, बात हो रही है वजन कम करने की, मोटापे की, ओबेसिटी की। ये एक ऐसी कहें तो बीमारी का ही रूप ले चुकी है, और कहीं ना कहीं अधिकतर हर एज के इंसान जो है, उम्र के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक भी ओबेसिटी से कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 पर।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक, आकाशवाणी रेनबो, रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की। हमारे साथ हैं रेखा पॉल शाह, डाइटिशियन, एम्स दिल्ली से, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास जो हमें अपनी बातें तो नहीं करने देंगे, लेकिन हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैसेज आया है वो दिल्ली से आया है, वो कहते हैं कि क्या नींद के ना आने से भी मोटापा बढ़ता है?
3: देखिए, नींद ना आना मोटापा से बहुत ज़्यादा तो नहीं कोरिलेट है। बेसिकली आप देखिए कि एक नॉर्मल हम एग्जांपल देते हैं कि कल आपके बच्चे का कोई फंक्शन है या कल एग्ज़ाम है, आप ओबेसिटी नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इसको, अगर आप नींद, प्रॉपर नींद लेना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा आप योगा करके, एक्सरसाइज करके, वॉक करके और हेल्दी ईटिंग हैबिट, जैसे आप रात में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाएं, तला भुना वाला खाना नहीं खाएं, तो थोड़ी सी हेल्प हो सकती है आपको नींद आने में, ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, जब ऐसा कुछ हो उस दिन आप डिनर में थोड़ा हल्का खाना खाएं, डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा, आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद कभी भी तुरंत बेड पे नहीं जाना है, आपको 15 से 20 मिनट नॉर्मल वॉक करनी है। ये ब्रिस्क वॉक नहीं है, फ्रेश एयर में कोशिश करिए। अगर नहीं है तो आप अपने घर में भी थोड़ा सा टहल सकते हैं, ये ऐसी सिचुएशन है। बट हाँ, आप अपनी डाइट बहुत ज़्यादा ऑयली वाली नहीं रखिए, जिसमें पराठा हो गया, लाइक आपको ऑयली चीज़ें बेसिकली अवॉइड करिए।

0: राइट में हितेंद्र दास आसाम से लिखते हैं कि बहुत बहुत वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, आपको बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी वो कह रहे हैं कि आप इतने अच्छे से टॉपिक को कैरी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो भी बात कही जा रही है वो समझ आ रही है।
1: थैंक यू, धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र दास जी आपका, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और जो बातें कही जा रही हैं उनको समझते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं।
1: अब मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है।
0: जी बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश से एक मैसेज आया है, ये है नैनी तारिंग, वो लिखते हैं कि नमस्कार, सबसे पहले तो एफएम रेनबो और आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बधाइयों का। साथ ही वो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो उन्होंने बात की है वो कह रही हैं कि आज ओबेसिटी पर डिस्कशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। आयरोनिकली जहाँ बहुत से लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, ये जो नैनी है वो वेट गेन करना चाहती है और उसका उन्होंने रीज़न बताया है। वो कहती हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश से है और अरुणाचल में जो खाना खाया जाता है वो बॉयल्ड फूड खाया जाता है ज़्यादातर, तो वो कहती हैं कि इस वजह से हम लोग पतले रहते हैं और दुबले पतले होते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि क्या अगर अलग अलग रीज़न में जो फूड हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से भी लोगों का मोटापा बढ़ता है, जैसे कोई अगर किसी और क्षेत्र में रहता है या कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, पंजाब में है, जैसे पंजाब में पूरी छोले भटूरे परांठे बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इस वजह से क्या ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ ज़्यादा मोटापा?
1: जैसे कि आपने बताया आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ बॉयल्ड फूड खाया जाता है। मैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि लाइक आप लोग बॉइल्ड चिकन लेते हैं या फिश लेते हैं, और देखिए क्षेत्र के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। अब दिल्ली में या बाकी किसी पंजाब या दूसरे क्षेत्रों में हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला, उसमें मसाले डाल के बिल्कुल एकदम ऑयल वाला अच्छा वाला लेते हैं। तो देखिए आपने अगर बॉइल्ड चिकन लिया आपको लीन प्रोटीन मिला, मतलब सिर्फ आपने क्वालिटी प्रोटीन लिया। हमने यहाँ प्रोटीन तो लिया साथ में एक्स्ट्रा कैलोरीज भी ली, क्योंकि ऑयल से हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल गई। शायद उस कैलोरीज की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए। आपका टेस्ट वैसे ही बचपन से डेवलप हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको। और मैं तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं तो लोगों को कहती हूँ आपको बॉयल या रोस्टेड फूड लेना है वेट रिडक्शन के लिए। और ऐसा आपको लग रहा है कि आपका वेट कम है, मे बी आपका हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट परफेक्ट हो।
0: हाँ जी,
1: हाँ, ये अभी आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली वो इवेलुएट करना पड़ेगा। और अच्छा लगा कि चलिए आप वेट गेन करना चाह रही है, मे भी आपका वेट, आपकी एज कितनी, एज नहीं बताई आपने,
0: नहीं,
1: तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए आप, वो ऑटोमेटिकली एज के साथ आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ कि अगर आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है अगर आप वेट गेन करना चाहते हो।
0: जी बिल्कुल। सरिता का मैसेज आया है दिल्ली से, वो कहती हैं कि वो खाना कम खाती हैं लेकिन उनका वजन बढ़ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है?
1: देखिए ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब मैं हवा भी लेती हूँ तो मेरा वेट, पानी भी पीते हैं तो वेट बढ़ जाता है दूसरे का। देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक तो रीजन ये कि आपको जब भी वेट रिडक्शन करना हो कभी भी प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है खाना कम खाना मत करिए। ये सोचना कि डाइटिंग या हम खाना कम खाएंगे तो हमारा वेट रिड्यूस होगा बिल्कुल गलत है। आपको मैं एक बस छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे हमारा मोबाइल होता है, ठीक है, आजकल मोबाइल एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों को भी पता है, इसलिए मैं सिर्फ मोबाइल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता, ठीक है। तो जैसे हमारे मोबाइल में बैटरी कम होती है तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका मोबाइल पूछता है कि आप बैटरी सेवर मोड में जाना चाहते हो, तो आपकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी मोबाइल की, जो एप्स हैं कुछ फालतू वाले एप्स वो चल उसको स्टॉप कर देगा एंड ऑल। वैसे ही हमारी बॉडी है, जो हम खाना कम कर देते हैं तो हमारी बॉडी ना सर्वाइवल स्टेज में चली जाती है। वो सोचती है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, अब हमें खाना कम मिल रहा है, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, कम से कम एनर्जी यूज करती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है और हम जो भी खाते हैं बॉडी उसे एज अ फैट के रूप में स्टोर करने लगती है। ये रीजन है, हमें लगता है हम तो खाना खा नहीं रहे लेकिन अपने आप क्या क्या मेटाबॉलिज्म आपने कम कर दिया और क्या नाम है आपने जो भी खा रहे हो फैट के रूप में स्टोर हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका वेट बढ़ेगा
0: जी।
1: आपको सही रास्ता चुनना है ना कि गलत रास्ता।
0: जी बिल्कुल। अमित का मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें पेट का जो हिस्सा है वहां पे बहुत ज्यादा फैट है, और साथ ही वो कहते हैं कि क्या हड्डियों बोन्स की वजह से भी

0: वेट ज्यादा हो जाता है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पहले मैं आपको दूसरा वाला जवाब देती हूँ, हड्डियों की वजह से वेट ज्यादा होता है। देखिए, बॉडी में जो हर किसी की बॉडी में जो बोन का वेट होता है, जनरली लोग कहते हैं बोन वेट ज्यादा है, ये
0: हाँ,
1: सिर्फ अपने को सेटिस्फाई करने
0: दिल
1: के
0: को
1: लिए कहते हैं,
0: समझाने के
1: कि
0: लिए ख्याल।
1: समझाने के लिए कहते हैं कि नहीं, मैं ओवरवेट नहीं हूँ, मेरा सिर्फ बोन वेट ज्यादा। 15 से 16% ही आपका वेट होता है हड्डियों का।
0: जी
1: उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा आपकी कैलोरीज ले रहे हो, फैट ले रहे हो, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से आपका वेट ज्यादा हो रहा है। ये जो कहते हैं गलत है,
0: जी
1: ठीक है। और पहला क्या क्वेश्चन था
0: जी
1: आपका?
0: उनका बॉडी स्ट्रक्चर
1: हाँ
0: जो है
1: हाँ
0: उसमें पेट में उनका बहुत
1: हाँ
0: ज्यादा फैट
1: ठीक
0: है, वो
1: है।
0: कम नहीं हो रहा
1: हाँ,
0: है।
1: एक्चुअली क्या होता है, देखिए, हमारा एप्पल एंड पियर से दो तरह की ओबेसिटी देखी जाती है। जो जब हम एक्स्ट्रा फूड लेते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे, और वो हमारा बर्न आउट नहीं हो रहा है, तो जो जेंट्स हैं, बेसिकली मेल्स में पियर
0: जी
1: से, सॉरी, एप्पल से बनता है, ठीक है। और जो फीमेल्स में एप्पल एंड पियर दोनों सेप देखा गया है।
0: जी
1: तो जो मेल्स में देखा गया, आपने जो बोला पेट पे एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको इट मीन्स दिस इज अ ओबेसिटी, आपको वेट रिडक्शन की जरूरत है, आपको टमी से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है जो बैली फैट को कम करे, डाइट्री मॉडिफिकेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, और ये छोटी छोटी बातों को ध्यान करके आप उसे कम कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि बिल्कुल कम नहीं होगा। अगर आप डाइट्री मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने कुछ हेल्दी टिप्स दी हुई हैं आपको, वो फॉलो करिए, प्रॉपर अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली एक डाइट चार्ट बनवाइए कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी है। अब देखिए, हर किसी की हाइट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को 1200 किलो कैलोरीज की, किसी को 1400, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और कोई कोई
0: जी
1: कोमॉर्बिड डिजीज तो नहीं है, वो भी डेफिनेटली मैटर करता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। अक्सर आजकल जो देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, कई बार लोग क्या करते हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि डाइटिशियन से, अपनी डाइटिशियन से एक डाइट चार्ट बनवाइए। इवन आप भी जो सलाह दे रहे हैं वो एक मॉडिफाई वे में आगे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का एक बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग
1: बिल्कुल
0: होता है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो वहाँ इतने सारे डाइट चार्ट्स रहते हैं, इतनी सारी डाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, क्या उन्हें हमें ग्रैब करना चाहिए, क्या हमें उनको फॉलो करते हुए अपनी डाइट में चेंजेस करने चाहिए?
1: देखिए, जनरल हेल्दी टिप्स की बात करती हूँ तो ठीक है, ठीक है। लाइक आपको वाटर इंटेक अच्छा रखना, अपना सैलड इंटेक अच्छा करना है, रिफाइंड फूड जो है उसको रिप्लेस करने हैं, दिस इज अ हेल्दी टिप्स, दैट इज ओके। लेकिन आजकल देखिए आप, आजकल जो टीनेज बच्चे हैं, या फिर आप और भी केसेस देख लिए, चाइल्डहुड ओबेसिटी, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं। तो विदाउट एडवाइस, विदाउट एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस के, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपको कुछ भी फॉलो करना चाहिए,
0: नहीं करना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: नहीं करना चाहिए।
0: डाइटिशियन से जरूर सलाह
1: हाँ
0: लेनी
1: बिल्कुल,
0: चाहिए।
1: हेल्दी टिप्स लेने में, वो तो आप देखिए, आप पार्क में जाएंगे तो आपको 2-3 लोग, तो इवन मेरे को ही, मैं अपनी सोसाइटी में जाती हूँ, वे किसी को पता नहीं कि आई एम न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे ही 3-4 हेल्दी टिप्स मिल जाती है। बट
0: जी
1: वो कितनी ट्रस्ट वर्दी है,
0: हाँ, ये भी
1: ये
0: बहुत
1: डिपेंड
0: जरूरी
1: करता है।
0: है।
1: कितने लोग कहते हैं कि रात में फ्रूट्स नहीं खाना है, सैलेड नहीं खाना है, बट देर इज नो साइंटिफिक रीजन। हम तो कहते हैं आपको रात में आप फ्रूट्स भी खाइए, कर्ड भी खाइए। कितने लोग कहते हैं रात में दही खाने से, योगर्ट लेने से आपको जुकाम हो जाएगा,
0: जी बिल्कुल
1: जी, बट ये ऐसा नहीं है। बल्कि आपको इसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया जो कहते हैं, वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और आप देख रहे हैं अभी जो मौसम चल रहा है, इसके अकॉर्डिंगली, तो अगर हमें किसी को दूध सूट नहीं करता है, लोग कहते हैं एसिडिटी हो रही है,
0: जी
1: तो आप दूध को रिप्लेस करके आपकी जितनी क्वांटिटी रिकमेंडेड है उसको दही लस्सी छाछ के फॉर्म में ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। आज मैसेज इतने ज्यादा आ रहे हैं कि कहीं पर भी मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि मैं म्यूजिकल ब्रेक लूं या फिर एड ब्रेक लूं, प्रोमोस ब्रेक लूं, लेकिन अब मुझे लेना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर बात करेंगे ओबेसिटी की, मोटापे की, कैसे आप इसे अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इंफो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन। हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर डाइटिशियन रेखा पॉल शॉ। आप एम्स में डाइटिशियन के तौर पर कार्यरत हैं और आपके कई सारे सवाल हैं जो एक्सपर्ट तक पहुंच रहे हैं और आप उनके आंसर्स पा रहे हैं। हमारे 9868107070 व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे तक अपने सवाल पहुंचा रहे हैं। और एक सवाल आया है, वो कहते हैं कि वो जिम जाते हैं, एक तो प्रोटीन पाउडर के बारे में वो जानना चाहते हैं कितना हेल्दी है और इससे कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, साथ ही वो कहते हैं कि वेट लॉस सप्लीमेंट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, तो इनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए।
8: देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप जिम जा रहे हैं या फिर कुछ वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो कितना ट्रस्टवर्दी है, पहले तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है। आजकल आप किसी भी जिम में चले जाइए, आपको सप्लीमेंट पाउडर रिकमेंडेशन जिम इंस्ट्रक्टर दे देगा, क्या वो एक क्वालिफाइड है आपको कोई भी सप्लीमेंट पाउडर रिकमेंड करने के लिए? आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या स्टेरॉइड्स हैं, उसके के ऊपर क्या साइंटिफिक कोई स्टडी हुई है नहीं है, तो इससे बेहतर है, मैं तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप नेचुरल चीज़ों पर जाओ, जो नेचुरल चीज़ें हैं नेचुरल तरीके से हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। और वो सप्लीमेंट पाउडर में भी आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, अल्टीमेटली वो प्रोटीन आपको अपने आपको लेना है अपनी बॉडी में, आप उस प्रोटीन को ना लेके नेचुरल प्रोटीन ले लीजिए अपनी डाइट में, लाइक सोयाबीन की बढ़िया प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, अंडा है और भी दूसरी चीज़ें हैं प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, हाँ ठीक है, उसको यूज़ करिए, बिकॉज उसमें स्टेरॉइड्स हैं और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आपके ब्लड पैरामीटर्स उस जिम इंस्ट्रक्टर को नहीं पता है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता है, तो यू शुड गो ऑन द नेचुरल थिंग्स।
7: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है, ये है सरस्वती का, वो लिखती हैं कि मोटापे से घुटनों का दर्द क्या हो सकता है, मोटापा इसका कारण हो
8: बिल्कुल
7: सकता है?
8: जैसे जैसे आपका मोटापा बढ़ता है, देखिए हमारा बॉडी का पूरा वजन घुटनों पे ही पड़ता है, तो बिल्कुल आपका वजन, आप जब भी अगर मोटापा हो रहा है आप किसी क्या नाम है ऑर्थो को दिखाएंगे डॉक्टर को, तो सबसे पहले आपको वजन कम करने के लिए ही बोलेगा
7: जी।
8: और डेफिनेटली आप इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, किसी आपका पूरा वजन घुटनों पे ऊपर है, आप मोटे हो गए तो उस पर ओवरलोड होगा ही, तो बिल्कुल आपका वजन की वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है।
7: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया, वो कहती हैं कि उनका बेटा जब उस 1.5 साल का है, जब वो पैदा हुआ था वो उसी टाइम से उसका वेट ज़्यादा था, लेकिन अभी भी उसका वेट बढ़ता ही जा रहा है, इतने छोटे बच्चे को ना डाइटिंग करवा मतलब
8: बिल्कुल
7: कुछ नहीं करवा सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी नहीं कह सकते हैं, उसके डाइट प्लान किस तरीके से करें कि वो हेल्दी भी रहे और उसका वेट भी कम होता रहे।
8: देखिए उसके लिए तो आपको सही बताऊं कि अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए पूरा हमें देखना पड़ेगा आप बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या दे रहे हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे पाउडर अवेलेबल हैं रेडी टू ईट। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आपको अब मुझे नहीं पता आप उसको घर का बना हुआ अच्छी चीज दे रहे हैं या मार्केट से जो

0: सप्लीमेंट्स आजकल बच्चों के लिए अवेलेबल हैं उसको दे रहे हैं, वो भी एक रीजन होता है। उसके लिए मुझे आपसे पूरा पर्सनल बात करके ही मैं बता पाऊंगी उसका रीजन क्या है। बट हाँ, आप कोशिश ये करिए अगर आपके आसपास या कहीं पे कोई भी है तो आप एक अच्छे से बच्चे को कैसे आहार की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली आप नेचुरल घर की बनी चीजों को, जैसे रागी, मैं बस दो तीन चीजें बोलूंगी, जैसे आप रागी दे सकते हैं बच्चे को। अब डेढ़ साल का हो गया है, अब डेढ़ साल का बच्चा सब कुछ खाने लायक हो जाता है, आप अपने साथ उसको बैठ के खिला सकते हैं। आप जैसे उसको जो नॉर्मल आप खाना खा रहे हैं वो दीजिए, लेकिन फिर भी फ्रूट्स दीजिए उसको बच्चे को, सूप बना के दे सकते हैं, रागी को दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में, वो आप देख लीजिए कैसे देना है, डिपेंड करता है क्योंकि डेढ़ साल का बच्चा है।
1: जी बिल्कुल, आजकल क्या होता है कि मम्मी लोग बिस्किट खा रही होती हैं या फिर पिज्जा खा रही होती है, वही पीस वो बच्चे को भी पकड़ा देती है।
0: देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, आजकल ओबेसिटी का बहुत बड़ा रीजन है, हम ना जंक फूड्स की तरफ तो ज्यादा ही हो गए हैं, तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि जंक फूड्स को अवॉइड करिए और हम जो खाएंगे वही बच्चा देखेगा। जनरली हम मार्केट जाते हैं या कहीं जाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, हम छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, जो हम पियेंगे वही बच्चा डिमांड करेगा और उसका वैसा ही टेस्ट डेवलप हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और अब वक्त कह रहा है कि हमें चलना होगा, तो आप चलते चलते लिसनर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, ये हमारी बॉडी को ना, हमें इसको थोड़ा सा एक दोस्त बना के इसका वेट रिडक्शन करना चाहिए, ठीक है, इसके को टॉर्चर नहीं करना कि आज हमें ये नहीं खाना। अगर आपका कुछ खाने का दिल कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ले लीजिए जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और प्लस आप अपनी डाइट में फाइबर इनटेक बढ़ाइए, वाटर इनटेक 10 से 15 ग्लास पानी डेली पीना है, हेल्दी ऑप्शन चुनिए, लाइक क्या नाम है, होल फूड सुनिए, होल फूड का मतलब है उसमें फाइबर इनटेक फाइबर हो, ठीक है, जैसे आप दालें यूज करते हैं तो हाँ होल, उसमें हस छिलका जो बोलते हैं वो होना चाहिए, ठीक है, रिफाइंड फ्लोर नहीं यूज करना है, और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाइए ताकि बच्चे भी देख के वही चीजों एक्सेप्ट करें। थोड़ा सा खाइए, बार बार खाइए, बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अभी समोसा खा लिया थोड़ी देर बाद कचौड़ी खा ली, नहीं, हेल्दी ऑप्शन चुनने, बिस्किट नमकीन ये सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना
1: है। बिल्कुल, मोटापा आ भी जाए तो परेशान नहीं होना है, बल्कि सिस्टमैटिकली उसको रिड्यूस करने के लिए उन एफर्ट्स को करना है जिससे कि
0: रास्ता मुश्किल नहीं है।
1: हाँ जी,
0: ठीक है, हम धीमे धीमे चलेंगे और फाइनली हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। जो आप इजी रास्ता अपनाओगे वेट रिडक्शन के लिए वो कभी भी सस्टेन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, और सफर अभी बहुत दूर है, तो हमें धीमे धीमे करके और डेफिनेटली हो जाएगा। यू शुड बी पॉजिटिव।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ हमें चलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम शुरू हो चुका है आशियाना और आज का आशियाना है विमेन स्पेशल। और विमेन स्पेशल में क्या होगी बात, हमारी घर की महिलाओं की बात, हमारी वर्किंग महिलाओं की बात। इन सारी बातों के साथ आज का ये पूरा घंटा है समर्पित हमारी विमेन के लिए। मैं हूं बबीता रावत, आपके साथ सुनते रहिए मेरे साथ आशियाना प्रोग्राम।

हंसना हंसाना और खुशियां मनाना हर किसी की जरूरत है, और खुशियां तभी आती है जब हमारे घर की महिलाएं खुश रहें। और महिलाओं के बारे में कहें तो महिलाएं जो परिवार की धुरी होती हैं, बेटी, पत्नी, माँ, बहू, घर के जिनके अलग अलग रोल हैं घर में, और इनके बगैर घर घर जैसा नहीं लगता है ना। परिवार को सहेजने और संवारने में इनकी लाइफ चली जाती है, लेकिन घर को मैनेज करने के चक्कर में अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना महिलाओं को थोड़ा सा चैलेंजिंग तो लगता है, लेकिन क्या करें, महिलाएं हैं, कर ही लेंगी। और प्रॉब्लम का हर सलूशन इनके पास है। खास तौर से कुछ चीज़ें हैं जो मैनेज करने में इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो क्या होती है? हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा है कि हमारे इमोशन की तरह आता जाता रहता है, और ये कैसे बैलेंस करना है आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। सुनते रहिए मेरे साथ आशियाना, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है आशियाना, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। बात हो रही है बदलते लाइफस्टाइल और कामों के चक्कर में ज्यादातर विमेंस को कई फिजिकल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है और ऐसे में अपनी सेहत को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे जतन भी करने पड़ते हैं लेकिन जिसे वो इग्नोर कर देती हैं। और इस इग्नोरेंस को क्या कहते हैं? जी हाँ, इस इग्नोरेंस को ये कहते हैं कि कभी कभी वो बीमार पड़ जाती हैं और फिर घर की पूरी व्यवस्था डगमगाने लगती है। तो ये व्यवस्था डगमगाए नहीं और अपनी सेहत का आप अच्छे से ध्यान रखें, इसी बारे में बात हो रही है। सुनते रहिए मेरे साथ आशियाना, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। विमेन स्पेशल है आज का प्रोग्राम, और जब बात आती है विमेन की तो हार्मोन बैलेंस की इस वक्त समस्या बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, इम्बैलेंस होते रहते हैं, हार्मोन मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे। लेकिन अब बात क्या है कि हार्मोन बैलेंस कब माने जाते हैं? भाई, एक छोटी सी मात्रा होती है हार्मोन की जो ब्लड में बहती है और बॉडी के साथ साथ उसे अफेक्ट करती है। और अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी में हमारे ब्लड में बैलेंस है हार्मोन्स, तो भाई बिल्कुल सही, हम बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे, हमारा मूड बैलेंस रहेगा। लेकिन कहीं ऊपर नीचे कोई चीज़ हो गई तो फिर मेटाबॉलिज्म को चलाने में जो ये मदद करते हैं ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है। व्यवहार में आपकी जैसे कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको थोड़ा सा ये चेंज करना शुरू कर देता है। शरीर में होने वाली एक्टिविटी और डेवलपमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन अब ये बात है कि हम इसे कैसे बैलेंस करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हार्मोन्स हैं जो इम्बैलेंस हो रहे हैं। और क्यों भाई, गड़बड़ लाइफस्टाइल और दिनचर्या क्या है, कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं। चलिए इसे बैलेंस कैसे करेंगे और नेचुरल तरीके से कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और भी जानकारी है हमारे पास। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

कभी कभी ना अपने आप से ही ये जो भरे हुए नैना होते हैं बहने लगते हैं, और ये सब कब होता है? कोई रीजन नहीं होता, बस अपने इमोशंस अपने आप ही छलकने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने का एक कारण, यानी कि ये कारण भी दिखाई देता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा तनाव में रहना, समय से टाइम से खाना ना खाना, एक्सरसाइज से थोड़ा सा जी चुराना, लाइक फिजिकल एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर भागना, और स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, ये सारे कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस के। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो रहा है आपका, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? वैसे बताते चले, कुछ कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कई चीज़ों से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर बात कहें तो ग्रोथ हार्मोन थायरॉक्सिन होता है जो थायराइड को बैलेंस करता है, और इंसुलिन हार्मोन होता है जो शुगर बैलेंस करता है, और कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करता है। और आप देखिए, कोई भी काम करना होगा आपको तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, एकाग्र रहना पड़ेगा। और ऐसे में क्या कर सकते हैं भाई? ऐसे में यही कर सकते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, बिना स्क्रीन के तो आप खाना भी नहीं खाते। तो एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि एक घंटा जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दे रहे हैं, उससे स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रखिए, चाहे वो मोबाइल हो या फिर टीवी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव आएगा, थोड़े

सी चीजें बैलेंस होंगी और कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स भी थोड़े से खुश होने लग जाएंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि हम बैलेंस हो जाते हैं। चलिए, और भी चीजें हैं जो आप करें तो 100% इसका नतीजा निकलेगा ही निकलेगा। अभी ये गाना आप सभी लोगों के लिए है।

जी हाँ, जरूरी है अपनी लाइफ को अगर आपको बैलेंस करना है तो अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा, और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। लाइफस्टाइल अच्छी अपनाने के लिए अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, उस समय के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा भाई, कोई हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है या चार पाँच घंटे वर्कआउट नहीं करना है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं आप वो कर सकते हैं। नेचुरल एंडोर्फिन, एक अगर आपको नेचुरली एंडोर्फिन को हार्मोन को बढ़ाना है, ये हार्मोन खुशी देता है, और खुशी देने की बात की जाती है, तो भाई आप क्या कर सकते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, फील गुड करवाने के लिए, ये कैसे कर सकते हैं भाई? बैलेंस करने के लिए कोई भी स्पोर्ट्स या फिर कोई भी एक्टिविटी ऐसी अपनाएं जो आपको अच्छी लगती है स्पोर्ट्स में, या फिर स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। जब से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई हैं तब से लोगों ने लिफ्ट के अलावा, शायद मुझे लगता है, स्टेयर्स का इस्तेमाल करना थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। लेकिन जो लोग अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं वो कोशिश ये करते हैं कि स्टेयर्स को चढ़ें। और वेट लिफ्टिंग भी एक बहुत अच्छा सोर्स है अगर आपको एंडोर्फिन अपना बढ़ाना है। इसके अलावा डांस और म्यूजिक किसे नहीं पसंद है, डांस और म्यूजिक पर थिरकना, चाहे आपको आता हो डांस करना या नहीं आता हो, या फिर सिंगिंग करना। जी हाँ, सिंगिंग करना भी एक बहुत अच्छी कला है, आप उसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मार्शल आर्ट के शौकीन हैं तो इसे भी कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे बिल्कुल बिल्कुल आपका नेचुरली एंडोर्फिन बढ़ेगा, आपका बैलेंस होगा। स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को और पुलअप्स कीजिए, ये सारी चीजें करेंगे तो जरूर से कामयाबी आपको मिलेगी और नेचुरली एंडोर्फिन बैलेंस होगा।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इंफो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जब भी कभी हम एक पार्टी में जाते हैं ना, तो हम कई ऐसे लोग खुश से चेहरों को देखते हैं और उनको देखने के बाद हमें ये लगता है कि काश काश ऐसा खुश सा चेहरा, ऐसी खूबसूरत सी जो जवानी है वो हमारे पास वापस लौट आए। और ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी को देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अब ये उनसे कभी उनका सीक्रेट नहीं पूछते कि आपके अंदर वो कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, आप फिट दिखाई दे रहे हैं, एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रूर पूछिए, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी एक अच्छी लाइफस्टाइल ही उनका सीक्रेट होगा। और जब हार्मोन्स की बात की जाती है तो भाई हमारी लाइफ में हार्मोन का क्या रोल है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इंसुलिन हार्मोन शुगर बैलेंस करता है, कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये आपको स्वस्थ रखता है और बिल्कुल जमा बना कर रखता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बर्थ, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मीनोपॉज के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहीं टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन की ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे बहुत से ऐसे हार्मोन होते हैं जो हम कोशिश कर सकते हैं कि बैलेंस हो जाए, और नेचुरली कैसे बैलेंस हो, जैसे अगर बात कहें तो सेक्रेटोनिन एक हार्मोन होता है जो आपको एकाग्र और शांत बनाकर रखता है, और इससे आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। कई बार होता है ना, हम हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट कर जाते हैं और कहीं ना कहीं वो जो हड़बड़ाहट होती है वो हमारे साथ अक्सर होने लग जाती है। तो जो ये बैलेंस की बात कर रहे हैं हम, सेक्रेटोनिन हार्मोन है वो बैलेंस नहीं होता तो अक्सर हमारी एकाग्रता में थोड़ी सी कमी, हम अशांत से होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करें, सिंपल सी चीज़ है, कैंपिंग करें, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला हो गया, ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया, या फिर कैशियो होगा, या गिटार हो गया, इनको प्ले करना सीखिए। जी हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, क्योंकि कई बार होता ना बचपन में आपका एक ख्वाब होता है कि काश मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता, तो क्यों ना आप इस अपने ख्वाब को पूरा कीजिए और अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल करके इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना सीखिए। वहीं कभी मौका मिले तो, दिल्ली में तो समुद्र नहीं है लेकिन हाँ, समुद्र के किनारे लहरों के पास बैठकर, या तो मैं ये कहूँ कि नदी के किनारे लहरों के पास बैठकर अपने पैरों को उसमें डुबाइए और आनंद लीजिए उन आती जाती पानी की बूंदों को। जी हाँ, पानी के लहरों को आप जब एहसास करेंगे तो कहीं कहीं आपका जो सेक्रेटोनिन हार्मोन है उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। पेड़ पर चढ़ो, बचपन में बहुत चढ़े हैं हम पेड़, लेकिन जब हमारी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हम सोचते हैं अरे कौन चढ़े पेड़ में, पेड़ में चढ़ना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ, बचपन में हमने अमरूद और बहुत सारे फल तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ करके उन्हें तोड़ा है, लेकिन आज भी आप ये कर सकते हैं और ये करेंगे तो आपका जो बैलेंस है हार्मोन का वो ज़रूर बनेगा। वहीं एक बहुत छोटी सी चीज़ है, सूर्यास्त को देखना। जी हाँ, सूर्यास्त को जब आप देखते हैं ना तो उससे भी हार्मोन्स कुछ बैलेंस होते हैं। रात में खुले आसमान में तारों को निहारना, इससे भी आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो स्विमिंग करके भी, जी हाँ, तैर करके भी अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आप स्विमिंग करें तो ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा, एक फिजिकल एक्सरसाइज और साथ ही साथ हार्मोन बैलेंस का काम भी करेगा। सुनते रहिए मेरे साथ आशियाना, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है आशियाना वुमेन स्पेशल है प्रोग्राम, और मैं हूं बबिता रावत आपके साथ। हार्मोन बैलेंस करने की बात की जा रही है, नेचुरली हम इन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं। वैसे नेचुरली जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं बहुत इजी प्रोसेस है, आपकी मन में अगर निष्ठा हो तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जो अभी तक मैंने बताए हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और अगर आप इन्हें करते हैं तो निश्चित तौर पर आप खुश भी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मूड भी अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वैसे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है, या भावनाएँ जो होती है जैसे

लव हार्मोन भी कहते हैं। और जब बात की जाती है लव हार्मोन की, तो इस ऑक्सीटोसिन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? स्पेशल वन को के लिए अपने खाना बनाइए, ठीक है। खाना बनाने की कला महिलाएं तो बहुत माहिर होती हैं इसमें, लेकिन किसी अपने खास के लिए अगर आप खाना बनाते हैं और मन से बनाते हैं, तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बैलेंस होता है। कुछ लिखने की हैबिट डालिए, जी हाँ, कुछ कुछ लिखते रहिए, अच्छा जो आपको लगे या अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं। वहीं किसी अपने को एक प्यारा सा हग भी दे सकते हैं, प्यारी सी झप्पी पाइए और अपने इस बैलेंस करिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। और किसी स्ट्रेंजर की मदद कीजिए, किसी स्ट्रेंजर की मदद करने से एक छोटी सी जो खुशी मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है और आपको फिट भी रखती है। हाँ भाई, ये एक साइंटिफिक बोला गया है इसको, कि अगर ऐसा करते हैं, एक अंदरूनी खुशी जो आपको मिलती है इसको करके, इस काम को करके, वो आपको थोड़ा सा अच्छा बनाती है, फील गुड फील कराती है और साथ ही साथ आपकी सेहत पे भी इजाफा करती है। इसके अलावा अगर आपके पास पेट है तो उन्हें सहला सकते हैं। देखिए ना, कई बार होता है ना कि हम बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे होते हैं और आपके घर में कोई पेट है तो आप उसको अपने पास में, अपने आगोश में लेकर के या अपने पास बिठा करके उसको टैप करते हैं, उसको पैट करते हैं या सहलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सुकून सा फील होता है। जिनके पास पेट है वो इस बात को ज़रूर जानते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा करिए और आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और आंखों से आंखें मिलाकर बात करना बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग आंखें चुरा चुरा के बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन उनका इम्बैलेंस हो रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करिए कि आप आंखों से आंखें मिला करके बात कीजिए। बातें और भी हैं, सुनते रहिए मेरे साथ।

वैसे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजें करना हम भूल चुके हैं, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ना, तो वो चीजें अगर अपनी लाइफ में अपना लें तो आप बिल्कुल बिल्कुल अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। हार्मोन तो बहुत दूर की बात है, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने डोपामीन को, फील गुड हैप्पी वाला जो आपका हार्मोन है, उसको बढ़ा सकते हैं, अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। और वैसे डोपामीन को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने बिस्तर को लगा सकते हैं, ठंडे पानी से नहा सकते हैं, शांत माहौल में बैठ सकते हैं, अपने कामों को करने के लिस्ट बना सकते हैं और खाना खाते समय गैजेट से दूर रहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर गैजेट से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ चीजें और बैलेंस अच्छे से हो सकती हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ से जाती हूँ, अगला प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर है, उसे सुनिए और उसके बाद अल्फा जन प्रोग्राम में 4 बजे से मैं आपके साथ हूंगी करियर पाथवे के। और आज करियर पाथवे में कौन सा करियर बताने वाली हूँ, सुनते रहिए मेरे साथ 24/7 आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे ठीक 4 बजे।

0: इवनिंग, मे आई नो योर नेम?
1: जी मैम, हम धेमाजी आश्रम से बीमा वसुंधरा बोल रहा हूँ.
0: सॉरी, क्या आप फिर से एक बार बता सकते हैं आपके नाम?
1: बिमल बसुमतारी, धेमाजी आश्रम से.
0: अच्छा बिमल जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में.
1: जी जी जी.
0: कैसे हैं आप?
1: जी हम ठीक है, मैं दुकान में बैठा हुआ है अभी.
0: दुकान में है लेकिन आप हमें कॉल कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया. तो पहले तो क्या गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम, हमको अच्छा वाला आपका पसंद वाला गीत सुनाने से हो जाएगा मैम.
0: मेरा पसंद वाला?
1: जी जी जी.
0: आज का कार्यक्रम तो ऐसा लग रहा है कि ये अरजी केनी का रिक्वेस्ट शो है. आप सभी लोग मेरा पसंद वाला गाना ही मांग रहा है, तो हम जरूर बजाएंगे आपके लिए एक गीत. तो जी हाँ बिमोल
1: जी मैम, कभी रस हम लोग का मर्जी से सुनता हूँ, आप लोग का मर्जी से भी थोड़ा सुनना चाहता हूँ हम लोग.
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया. एंड जी हाँ बिमोल जी, कुछ डेडिकेशंस?
1: जी जी, हम लोग का है रुखुबिला मीठा है, आइकन मुंडा, अमूल बसुमतारी, रमेश पात्र और जितना लोग सुन रहे सबके लिए डिलीट करना चाहता हूँ मैम, और आपको भी.
0: थैंक यू सो मच बिमोल. एंड फोन काटने से पहले बिमोल जी, वहाँ वेदर कैसा है, आसाम में वेदर कैसा है आज?
1: जी मैम, आज तो थोड़ा धूप है, गर्मी हो रहा है, बारिश तो रात को थोड़ा आया था, अभी नहीं आया है, अभी ठीक है मौसम, गर्मी है लेकिन अभी.
0: ओके ओके बिमोल जी, शुक्रिया आसाम के वेदर रिपोर्ट हमें देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिमोल जी. एंड अभी जो है हम आपके लिए एक सरप्राइज गीत बजाने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा. एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, जुड़ी रहेगा हमारे साथ.
1: शुक्रिया,
0: थैंक यू. द लिसनर्स, दैट वॉज आर डियर फ्रेंड बिमोल फ्रॉम Assam, and he wants me to play another of my favorite. What a lucky day for me, right? So I have the track ready. I hope you guys will enjoy. And he did made a dedication for his friends out there. So I hope you guys are tuning in. Let's enjoy the track together now.

0: प्यार करती हूँ, कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21

0: लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांचेस आल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।